अपने अमृतमयी बचना विच राग आसा विच वर्णन कर दे हे मेरे वाहिगुरु तेरी जो सर्व व्यापक जिथे भी मैं जाना उथे मेनू तू ही तू नजर आना जे मैं कदी मक्के विच जावना ते उथे भी मेनू तू नजर आना ते जे किसे मंदिर विच जाना उथे भी

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदे, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनू ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी।

हरंगी हरम सुमारिया कोटि मंडमानिया लै बेटी कर पैसारिया चीज क्रमन भावन दर भुजन नाई हारिया कर फमाश खा

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेकां लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बींद उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बींद चों जदों सारंग दी तो निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ए पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे, नानक राहो पछाणे से। इस दा उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगदे हन। गंधार अते धैवत वर्जत हन। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे

आयुक्तकार सतनाम करता पुरख नृप निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैभ अंकुर प्रसाद आशा मल पहला वार्ष लोकानार श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे।

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सत्य फरमान सत्य तेरा कर्म सत्य निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी वड़े जा वड्डा ना वड्डी वड़े सत्या वड्डी वड़े निश्चल था वड्डी वड़े जाने ला वड्डी वड़े बिरसा पाओ वड्डी वड़े पुछंदा वड्डी वड़े जा पिया नानक और नक थिन जे की ता करना सर जा
0: महला तू जा ए जग सच्ची की कोठरी सच्ची का बजबाल एक नाम कुमाल एक नाम कुमे करिबना एक नाम पाणे कडले एक नाम आया बिचनवास ए पी आखन जापे किशन रा नानक गुरु जाने जाको।

0: सतकथा श्लोक मला पहला विस्मानाथ विस्मात वेद विस्मात जी विस्मात पे विस्मात रूप विस्मारंग विस्मात नागे फिरे जन विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेरे बनाने विस्मात अर्थ विस्मात खाने विस्मात साधक के प्राण
1: विस्मात स्नोक विस्मात बिजोग विस्मात पुख विस्मात पो विस्मात शिफ्ट विस्मात सला विस्मात औजल विस्मात रा विस्मात नेने विस्मात दूर विस्मात देख हाजरा दूर देख बड़ान रिया विस्मात नानक बुझन पूरे
0: महला पहला कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत।

गाय पार कोलू चरखा चक्की चक थल भरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया अनगा पंखी पौधे लेना सा सुए टाड़ पवाई जलत नारक पौधे गलत नंत बंधन बंद पवाज ये कृष्ण ते सबको नज नज चले सोरोए उड़ना जाए सेद न होए नक्कल कुदल मन का चा

A number is set to strongly work. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी तो कही मंग नानक को ब्रह मया कर सच देव अपना क्योंकि सच सदा रहने वाली कूड़ बिखुटे नानका कूड़ में मुक जा पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे तो इस वास्ते नानक पूर्ण निकुटे नाम का पूर्ण सच तो सिद्ध दी है दास पातशाह मैनु सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा है उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सत्कार हाँ जी रस्ते चंगे रस्ते थे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले हजूर फरमाते हैं सच्चे मार्ग चल देना उस तत् करे सच जरा सच पे बोल रहे और दुध पे जरा झूठ पे बोल रहा है और जहर पे सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलन जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना मेरे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हम वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा ओदा नाम ही अंब और जेड़ा उसके उत्ते फल लगा है ओदा नाम ही अंब और सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पैर सामू जरा अम फल है वो प्राप्त इसे उस वाहिगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहिगुरु शब्द वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा इस सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाह की टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट दी लो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया को छोड़ के पुत्र धियां को त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ऐ धन गुरु अर्जन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते ते एक दिन इंसान ने तुरना है महाराज पता दसो कितने वीर उसके कोह किन्ने दरिया भी सब बांबे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੂੰ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ

इस मार्ग से एकदम तुरना, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने कौन अपना महाराज फिर तांता थे, डंके जी रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धिया ने भी साथ नहीं देना, फिर कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर कम

0: think of.
1: हाँ तो भाई ये दरगाह ही थी माता जी बच्चों कर दे टिकट नो कितना संभाल के यूके जाना हो हजारा रुपए की टिकट होती होती भी समान ये टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तो मिलते नाम की जो प्रेरणा है ये नाम जपने वाले महापुरुष का नाम गुरु तो नाम अमोलक रतन है पूरे सर्ग पूरे गुरु तो किस वेले मिलते जिस वेले असी अमृत छे पंजा प्यारे साहब श्री गुरुग्रंथ साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपन भुलां नूं सोध अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरुग्रंथ साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे तैयार कर त्यार अपने सोध के अपने आप को सोध के साहबां की हजूरी खड़ोते होते हैं हजूर कहना उन्हें पंजां दे अंदर मैं आप आ गया पंज परवान पंज प्रधान पंजे पावे अंदर पंजे सो है इत्थे कोई व्यक्ति नहीं भी ओ व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगीधर पातशाह जी ने इन्हां बंधना नूं कट कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का निकले भी प्रेम गुरु के हुक्म फिर अमृत पान कराने को पहला फिर भी अरदास कर आशा करूंगी जी हर वेले हर श्वास आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श ल प्रभ आगे गुरु भक्त बहुत पंच प्यारे त्याग कर फिर अमृत छकने वाले ने उस वेले गुरमंत्र दी दा गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष दी जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब जेड़े तोड़ते उन्होंने दी संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्या तोड़ता है वह सानू गुरु तो तोड़ी संगत नहीं जेडी जुड़न वाले हैं जिन्हों की संगलिया दुर्मत मने मित्र सारे सही हाँ नुढ़ेंदी जग सभाया जन नानक विरले है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने पैर पकड़ नाम फोटो देखो ना भी किसी चीज का नाम दिख जिस तरह मास्टर इनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो इन हो इसे तरह संत सारे चले हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है वो सिख है बापू है ओ आप गुरु नहीं बनेगा सानू बड़ा जोड़ देगा उन्होंने महापुरुषों की संगत नाल संत
2: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो Broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी का जो एक सफर है अते ओ सफर की मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। How many of us can claim this? कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। How many? In fact, सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल। सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू यह नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू यह पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो। बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

0: सतसंग जी दास ने आप जी की सेवा दे विच 10 दिन रहना है। पिछले 10 दिन ओमान मस्कट जो 10 दिन का लगातार कीर्तन करन दा मौका मिलिया, उस तो बाद कल उत्थे कीर्तन की समाप्त हुई, कल ही फ्लाइट ली और सारी रात ट्रैवल दे विच गुजरी, अज इत्थे सुबह पहुंचे हाँ। आप जी दे पहली दफा सिंगापुर विखे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया है, ते मेरे धन भाग हन। तो बाकी 10 दिन जो हैं ओ महाराज जी ने जो इस शब्द दे विच आख्या है उसे दी ही एक विचार दी लड़ी रहेगी, अते उस लड़ी नू आप जी कोशिश करना के पूरी दी पूरी सुनन दी कोशिश करना। सो इस टॉपिक दे उते 10 दिन कीर्तन होएगा। आप जी ने बहुत ध्यान नाल शब्द सुनिया होएगा तो गुरु साहब जी ने साड़ी जिंदगी दे तीन एरियाज नू एड्रेस कीता है। वो केड़े केड़े हैं? बॉडी, माइंड एंड सोल। तिन्ना नू गुरु साहब जी ने इस शब्द दे विच संबोधन किया है। काया नू आख्या है, काया नू एड्रेस किया है, हों तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, कि काया दे प्रति भी सानू कुछ समझण दी जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो सिख्या है काया दे प्रति, कि काया की है, इसका पोटेंशियल की है, इसकी कैपेबिलिटी की है, एक कादे वास्ते मिली है, एक की वस्तु है, असी ओ सुनना है ताकि असी अपनी काया नू जिमें वरतना चाहिदा है उमें वरत सकी। काया है बहुत एक स्थूल चीज जो नजर आती है, सॉलिड है, ग्रॉस है, माइंड उस तो सटल है। गुरु महाराज जी ने इस शब्द दे विच काया नू एड्रेस किया है, फिर माइंड नू भी किया है, मन नू भी संबोधन किया है। कहते हैं सुन मूर्ख मन अजाणा, मन नू जिसले एड्रेस किया तो आख्या कि यह सुधी मूर्खता का ही घर है, फिर उस दे नाल किवें डील करना है। ते तीसरा हिस्सा है जीड़ा जीव आत्मा, आत्मा नू महाराज जी ने रूह नू सोल नू एड्रेस किया है। सो इन 10 दिनों दे विच असी ये तिन्ने एरियाज जो हैं वो कवर करांगे, तिन्ना उत्ते विचार करांगे। शरीर दे प्रति समझांगे क्योंकि शरीर अते मन अते आत्मा जितनी देर तक के तिन्ने दे तिन्ने एक हारमनी दे विच नहीं आ जांदे, एक दूसरे दे नाल ट्यूनिंग नहीं हो जांदे, उतनी देर तक साड़ी लाइफ जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट दे विच, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच कन्फ्यूजन है, उतनी देर तक साड़ी लाइफ दे विच परमार्थ नहीं आ सकता। सो समा अज समाप्त है। अज की विचार आप जी की सेवा दे विच जो रखी है वो इत्थे ही समाप्त करते हैं। अज तो सिर्फ आप जी नू जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है कि किस चीज उत्ते 10 दिन कीर्तन होंगे। आप जी वक्त से रोजाना आओ, होर भी संगतां नू लैके आओ ताकि असीं गुरु बाबा जी की जो गुरमत है उसनू सुन सकीए, उसनू विचार सकीए, ते उस तो अपनियां जिंदगियां दे विच जो साडे जीवन का रूहानी पक्ष है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आत्मक जीवन है, उस वल नू असीं कदम वधा सकीए, अपने जीवन की यात्रा असी भी सफल कर सकी। आज आप जी एक शब्द जरूर नाल लेके जायो क्योंकि सारा कीर्तन तो जांदे जांदे याद नहीं ना रहा करदा, पर एक पॉइंट ते नाल लेके जा सकते हो जिसनू असी आख सकते हैं कि फूड फॉर द थॉट, वो ए है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज आखते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है। वो कहते हैं मेरी सक्सेस इस गल दे विच है, मैं सक्सेसफुल इस करके हाँ कि मैं अपनी जिंदगी दी यात्रा दी मंजिल ते पहुंच गया हाँ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੌਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਂ। ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
0: Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.

अकाल मूर्त अजूनी सैम हंगुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चकर के निर्वर्ण जात हर पात निहिंजे रूप रंग अरगी पीप भूकर सत्य अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंज भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिज फिर भवन में ही सुनारा सुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आधारी नानक दास संत पाछा करियू राख लियू ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया

अपने पद करें प्रद बाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई भाई जी का खालसा।

कृपा करो, दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. मन तन थाप किया सब अपना, ए हो आवन जाना। He believes the mind and body are all his own. That's the cause of his coming and going. जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लुपटाना। He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. जिन किया सोई प्रभ जान है, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।